एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है? रात पैंदी है सौ जाने, दिन चढ़द उठ के कमां कारण तुर पैने, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम। एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा होए?

आंख सुनाए पूछे लाहे विश्वास। अकृत कण दी तस्वीर की है, मद विच रिद्दा पाए के कुत्ते दा मास। कहिंदे ने कुत्ते दा मास, मद कहिंदे ने शराब विच रिने, तरिया मानस कोपरी मनुख दी कोपरी विच उसनू रिने। तिस मंदी वास रत्तू भरिया कपड़ा लहू दा पड़िया, लाल रंग दा कपड़ा। इस नाल इसनू टक के कहिंदे ने एक बीबी ले जा रही है, ताकल चली चूड़ी कल भोग बिलास। आख सुनाए पुछया लाहे विश्वास, किसी ने जांदिया पुछ कर ली बीबी कुत्ते दा मास। शराब दे विच रिन्या मनुख दी कोपरी विच बनिया होया, इनू तू टक के क्यों ले जा रही है, इनू किसे वेखना है। कहिंदे ने बीबी ने जवाब बड़े कमाल दा दिता, कहन लगी वीरा सुन, नदरी पवे अकिरत कन मत होए विनाश। मैं टक के वीरा इसलिए ले जा रही हां किते अकिरत कण दी नदर ना पै जाए। अकिरत कण दी नदर पै गई, ए भी भोजन व्यर्था चला जाएगा। सो अकिरत कण दी नदर भी इन्नी भैड़ी हुंदी है, कदी पत्थर ते भी पा देवे ना ओनू भी दुफाड़ करके रख देंदी है। मैं ते समझना अकिरत कण दी नदर तो भी बच के रहना चाहीदा है। बचो अड विश्वास घातिया कोलो, अकिरत कणा कोलो, जेड़े किसे दा मनुख दा कीता नहीं जान दे, उना मालक दा कीता की जानना। अरदास करिए विश्वास काती अकिरत कण, मैं कोई ना रखंदा। पैसा पाई गुरदास जी कहिंदे

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलता कितों है आख्या जपन वालियां की संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां की संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हानू नाम का आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री इस लई हजूर बख्शिश करते हैं कि यह गुरु की शरण विचों मिल सकता है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहिंदे ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता।

आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगी भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

पता नहीं किन्ना कु सियाण है, किन्ना कु सुगड़ है। कोई हिसाब ला सकता है क्योंकि उसकी किरत का हिसाब नहीं लाया जाता। तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन समार। तेरी दिती हुई दात की समझ नहीं आती, तेरी समझ कितों आ। तेरी दात का ही मुल नहीं पाया जाता, तेरा कौन मुल पावे। तेरी दात ही एडी सोहनी एडी खूबसूरत एडी जुगत वाली है, तू किन्ना सियाना होगा। साहब कहते मत समझी वो सियाना कोई होर भी है जिसने तेन शरीर दिता है, जिसने शरीर च मन पाया, जिसने तेन वर्तन वास्ते धन दिता है, जिस दिया सारिया बख्शिशा भोगदा है ओदे नालों सियाणा होर तेनू कोई मिलेगा नहीं। ते कई बार तो इन्ना भी भुलेखा लग जाता है, तू ऐसा समझ लग पैना उन्हें कोई गलती की है मैं ठीक कर दिया। जो उन्हें बनाया शायद गलत बनाया मैं उन्हें ठीक कर देवा, जो उन्हें रचिया शायद गलत रचिया है मैं सुधार कर देवा। अपने आप नूं उहदे नालों सियाणा समझ बैठा होवांगा। कोई सूरत नहीं, कोई तरीका नहीं कि तू अपने आप नूं उहदे नालों सियाणा समझ सके। जिसने तन मन धन जिन प्रभ दिया, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खान। एक शब्द च महाराज सच्चे पातशाह ने सानू चेता कराया, चेता ही कराने वाली गल है। पता सारा है भुल जाने साहिबा ने पावन बाणी च सानू उन्हां चीजां की सारी निश्चता नहीं आती, लेकिन मोटिया मोटिया जिन्हां बिना बंदे का नहीं सरदा उन्हां दा जिक्र महाराज ने किया। तो कहने तेनू ओदा चेता है, तेनू ओदा ख्याल है, जिसने तेनू इन्ना कुछ दिता है

0: उस स्याणे प्रभु ने सुजान प्रभु ने मेरे मन की वेदना मेरे दुख सुख न सुनिया ते ता मैनु बहुत लाहे वंदे फल पदा प्राप्त होए तो बिद नीकी चंगी बिद नाल चंगे ढंग नाल मैनु लाभ प्राप्त होए ऐसे करके मैं हाथ बने ने ओदे अगे जी की एक ही पैमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तिलनी कीमत जानी प्रभु तो बेमुख होके जिन्हें मर्जी जतन कर लिये होमे दे परे हुए पदार्था नाल बजे हुए जिन्ना मर्जी भज नठ कर लई ओदी कौड़ी कीमत नहीं ओदी तिल भर भी कीमत नहीं। हां जिस दिन गुरु के हो जाइए जिस दिन ए एहसास हो जावे जिसका दिया पहने खाए तिस्यों आलस क्यों बने माए साहबा दी सुखमनी रोज पढ़ते सुनते जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे दे आए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस तर रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याइए त्यावन जोग। कितना कुछ उसने बख्शिया है कितना कुछ प्या मानना है ओदे सामने स्याणा बनके ना बहो निमाणा बनके ओदे सामने होशियार बनके ना बहो ओदे सामने ता चाकर बन जा सेवक बन जा भोला बन जा ते जिस दिन भोला बन जाएगा पायो बाल बुद्ध सुखरे स्वाद आ जाएगा ओदियां बख्शा दा पात्र बन जाएगा। ए भावना लेके हम किछ नाही एक है ओही आगे पाछे एको सोई ऐसी भावना लेके ते जिस दिन ए भावना लेके तुरेगा फिर गुर बोयत वड भागी मिलिया नानक दास संग पाथर तरिया तर जाएगा तरन वाले होना है ते फिर मालिक दे अगे इस भावना नाल चुकिया करिए।
1: तिन ही सुनिया दुख सुख में पार।
2: You are listening to SeekNet Radio.
0: चुकिया करिए।

सतगुरु कहंदे ने देह सदा नहीं रहनी, जिंदगी विच कोई ऐसा कम कर जा के लोग तैनू याद करन, भाई वाह फलाना तां इदां दा सी, बड़ा चंगा सी।

ना ही कोई ऐसा ढंग है ते ना ही परमात्मा मेरे मिठे बोलने जेड़े बोल बोल की मैं तेनू अपने आप ते मोहित कर लवा। ऐसा गुण मेरे अंदर कोई भी नहीं है, मैं ते अवगुणा दा परिया। तकना के परमात्मा रूप कैसा वेखदा, शारीरिक रूप नहीं वेखदा। साहिबा ने बाणी विच कथन

कुलवंत है, कुलवंत है, पतवंता सज्जन है, जिद हिरदे अंदर प्रभु दे नाम दा निवास है। हे परमात्मा, मेरे अंदर ते अवगुण भरे ने गुण ऐसा कोई भी नहीं। हे परमात्मा, आप दी मंग है के बोल मिठे बोल, मैं जद बोलना कौड़ा बोलना, ते मेरा परमात्मा कैसा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ओ मिठा बोल बोलदा है ते हुक्म करदा है भाई मिठा बोल बोल, जो बोल बोलने करके किसे दा भला होवे, किसे दा मन ना टुटे। हे परमात्मा, जेड़े गुण तेनू चाहिदे ने मेरे विच नहीं, इसलिए मैं चंगा नहीं।

कोई ना रखे। विश्वास घाती अकिरत कण, विश्वास घाती किसनू कहिंदे ने, जिहड़ा किसे नू प्यार विच लिया के बसा के मारे, अपना बना के मारे, उसनू विश्वास घाती कहिंदे। ते अकिरत कण भाई साहब कहिंदे ने।

के लजा रही सी। रस्ते विच एक मुसाफर पुछ करदे, बीबी कुत्ते दा मास शराब विच रिन्ने आ, मनुख दी कोपरी विच बने, ते इसनू तू टक के क्यों लजा रही।

मेरे मालिक मैं तेरे नाल जुड़ जा, तेरी गलवकड़ी विच आ जा, तेरे विच समा जावा, मन करके तन करके, अधूरा नहीं, केवल तन करके जुड़िया होवा, मन ना जुड़िया होवे ऐसा भी नहीं। ते जे मैं ऐसे बहाने करा कि मेरा ता मन जुड़िया है, तन की केड़ी लोड़, प्यार ता इस तरह कोई नहीं होता। जिन्होंने प्यार किया है महाराज उन्हां दी गल करदे ने, गुरसिखां दी गल करदे ने, भगतां दी गल करदे ने, संतां दी गल करदे ने, जिन्होंने प्यार किया, ते प्यार किया ते फिर भरपूर किया। प्यार च अधूरेपन दी की गल, जब भरपूर प्यार करना है ते फिर तनो मनो प्यार करना है।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संग

भूले, कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे, कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे, कहूं नाद है के भली भांत बाजे, कहूं पारधी है धरे बान राजे, कहूं मृग है के भली भांत मोहे, कहूं कामनी जो धरे रूप सोहे,

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कतहूँ बिच

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोठ महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

0: ऐसे ध्रुव पहला जप्यो हर जैसे माँ राजू बाबा ऐ पढ़े संत। मैं पूछा क्या लगे बड़ी लंबी कथा माँ तनवान दी है।
1: हाँ सुन, हरनाक्ष नां दा एक बड़ा शक्तिशाली राजा सी। उन्हें भगवान की भक्ति करके एक वरदान लिया कि ना वो दिने मरेगा ना राती मरेगा ना अंदर मरेगा ना बाहर मरेगा ना मनुख कोलो ना किसी जानवर कोलो। भगवान का वरदान लेके वो आप ही भगवान बन बैठा। उस राजे का एक पुत्र सी प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता नु भगवान मनन तो इनकार कर दिता। क्रोध विच आ के पिता ने पुत्र नु तपते थम नाल जफी पान का हुक्म दिता। ते प्रहलाद दे दिल विचों आवाज आई, पान लै तपते थमा नु जफिया आपे तेनु राम रख लो। प्रहलाद ने थम नाल जफी पा ली पर ओदा वाल भी वेंगा ना होया। उस विच आ के राजा ने तलवार कट ली ते थम पाट गया।
0: मैं भी प्रार्थना की माँ भगवान का जाप करांगी।
2: मेरी मेहनत मेरी और आपको पुठे पाठ पढ़े जा रहे।

कोई गावे कोई सुने किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही इस नूं गा सकता है या सुन सकता है, बल्कि जो भी श्रद्धा नाल इस नूं पढ़ता है, श्रद्धा नाल इस बाणी नूं सुनता है, ये बाणी उसे दा कल्याण करती है। ऐसी है ये अमृतमयी बाणी, जिस बाणी प्रथाएं गुरु पातशाह कहते हैं।

असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन ही गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नूं दित्ती है, मेहर कीती है पातशाह ने। आख्या भाई कोई सुने, कोई गावे, कोई उपदेश करे, किसे भी जाति दा होवे, कोई नीच कोई ऊंच नहीं, बल्कि सारिआं दा सत्कार।

प्राणी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाँ बुरियाँ वाचे धर्म अधूरे करमिया हो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत का सकत का

दूसरा रास्ता दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत सब सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै पपीए नू वेख लै जेड़ा स्वाति बूंद ते पिछे पपी पपी प्या करदा सब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़ियां करदा है मेरे पातशाह किते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावा बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना तो एक ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक के गुणा का अथाह बयान करते हुए अपने रचना तो कृपा करते ने ते आंदे ने

पातशाह तो सवाल कीते, पातशाह तुसीं अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज क्यों नहीं कीती? कहन लगे फर्क है, उत्थे रब दी कथा है, इत्थे मैं अपनी कथा कह बैठा, इसलिए अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं की। पातशाह तुहानू की लोड़ पै गई अपनी कथा सुनाण दी? कहन लगे लोड़ सी, जिस वेले तुलसीदास किसे प्यार विच आया, श्री राम नू भगवान राम कह बैठा, सूरदास बहुत ही सत्कार विच आ गया ते कृष्ण नू भगवान बना बैठा। कोई ऐसा सिख उठ के मैनू भगवान ना कह बैठे, वाहगुरु ना कह बैठे, इसलिए मैनू अपनी कथा कहनी पै रही। पर जे पातशाह तुहाडे गुणां नूं तुहाडी महिमा नूं वेख के कोई कह बैठे भई तू ते रब इको ही हो, तू ही रब है, ते फिर की होवेगा? हजूर ने बचन कीता,

बादशाह कहन वाले कह छड़ देनी। भाई गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतारा दे बड़ा खंडन कर दिते कि उन्हां दे दिल विच कोई भेद सी, फर्क सी। बादशाह कहन लगे, नहीं मेरा किसे नाल वैर नहीं, मैनू जिवें वाहगुरु ने गल्लां आखियां ओ मैं संसार नूं दस रहा। दूजी गल, ओना तो विछोड़ के जे मैं आखा मेरे पैरां दी पूजा करो तां ते मैं भुल विच हां। मैं कहिंदा भई नहीं, ओ भी दस रहे ने, मैं भी दस रहा। उस वाहगुरु दे तुसी भी सेवक बनो, इसलिए मेरा किसे नाल वैर नहीं। हजूर कहिंदे ने

इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण गाय ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

अजय सरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन विछड़ गया रोवे ते सर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत